106.3 FM, Gio Bendaz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس.
2: सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
3: जबरदस्त है। अभी बजाएगा ना भिड़ो।
4: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली, फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा, मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं, निकलेगी भाई की सवारी। हाँ थोड़ा टाइम रुक जा खड़ी,

106.3 FM, Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Manila's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: तनिषा अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में फिसल जातू हसीन दिल रुबा से यॉल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. देखो आज खुशी की लहर थोड़ी ऊपर होगी क्योंकि वेंसडे आ गया है, जुलाई 22 है, कल थर्सडे और फिर वीकेंड. यस, व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज सुबह की नींद. यस, एंड आई एम श्योर कि मैं सुबह 6 बजे फिर भी उठ जाने वाली हूँ क्योंकि एक हैबिट बन जाती है, राइट. लेकिन आप बताइए कल का दिन कैसा रहा आपका, आज क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, और मैसेजेस कीजिए. गुड मॉर्निंग मैसेजेस ऑलरेडी मुझे यहाँ पे शुरू हो चुके हैं आने, वो हम पढ़ेंगे कुछ ही देर में. तब तक आपके पास भी वक्त है, आ जाओ जरा 3311 1063 पर. ये तूने क्या किया, जावेद बशीर साहब से पूछ रही हूँ, ये आपने क्या किया, इतना सुंदर गाना बना दिया है ना, जितने भी बार सुनो और जितने भी रेंडिशन सुन लो, उनकी जो स्पेशली लाइव परफॉर्मेंस थी इस गाने की, ओ माय गॉड, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल.

0: ब्यूटीफुल गाना
1: बड़ा समझ आया तैनू समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां
0: ऐसे कैसे बात थोड़ी मानी जाती है जो काम करने से मना किया जाए ना दिल ने वही करना होता है

बॉय, बड़े बड़े वादे. वेल, अभी मुझे आपसे वादा चाहिए कि मैसेज आ रहा है यहाँ पे 3311063 पर. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444106 पर. एंड फिलहाल भेज रही हूँ अरिजीत और अकाशा की आवाज में कॉकटेल टू से जब तलक. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha. Tanisha.
1: Hashdeep Kaur aur Jasim ki awaaz mein Manmarziya movie se beautiful triangle on radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindas mornings chal rahe hain yahan par and we've got a messages over here. So, padhte hain, Nazri ji ka message aaya hai. Good morning, trust yourself and make it a great day. Simple and sweet aur bahut hi perfect advice. Ji haan. Then Abrar ji ne bhi hame good morning kiya hai. Saath mein Shashikant Patil ji ka message hai. A beautiful day starts with a beautiful mindset. Think positive. I think ye kal ka hai. Aaj ka tha. Never complain, never explain, stay silent and enjoy the pain. Oh my god, ye to kafi deep ho gaya yaar. Kyunki hum complain karte rahenge, grip karte rahenge to waqt hi zaya ho gaya yaar. कोई फायदा नहीं है उसका. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. एंड संधू जी का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग ऑल, हैव अ नाइस डे. जियो बिंदास हरपाल संधू फ्रॉम जिक्र दुकान. गुड मॉर्निंग संधू जी. देन वी हैव अ मैसेज फ्रॉम अर्श. गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन, मेड टुडे बी सिंपली डिवाइन. इंशाल्लाह सभी के लिए. एंड देन मोहम्मद असलम साहब का मैसेज है. गुड मॉर्निंग असमा इज योर. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ये मैसेजेस का सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए. मैं एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गई यार आपके लिए.
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस.
1: हां जी,
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल.
1: बस वेरी गुड, वेरी नाइस ही जाना चाहिए पूरा दिन भी. अभी भेजी हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर और फिर लौट कर आऊंगी और एक बहुत कमाल की चीज लाई हूँ. वो सुननी तो आपको देखो पड़ेगी क्योंकि आप ही के लिए लाई हूँ मेरी जान. हाँ जी, स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास.
0: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
0: Awesome.

0: Tanisha.
1: Tanisha. जावेद बशीर साहब की आवाज में बहुत सुंदर गाना फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और यू नो कभी नोटिस किया होगा कि यार कुछ लोग बहुत लकी होते हैं और देन वी गो इन टू दैट स्पाइरल कि मेरे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है यार, मेरे साथ तो कोई ढंग की चीज़ होती नहीं है, वट एवर आई प्लान डजेंट गो माई वे. तो उसके बारे में राज शमानी साहब ने कुछ कहा है, जरा सुने.
2: यू नो हाउ इट लुक्स लाइक दैट द यूनिवर्स इज ऑन द साइड ऑफ सम पीपल, लाइक एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर देम समहाउ. द टाइमिंग इज ऑलवेज राइट, द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर, दे कीप गेटिंग लकी. द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज बिलीफ, नथिंग एल्स. नो टैलेंट, नो स्मार्टनेस, नो लक प्लेज अ रोल. द यूनिवर्स इज ऑन देयर साइड बिकॉज दे बिलीव इट टू बी. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोनोया. हाउ पैरानोया इज थिंकिंग दैट द वर्ल्ड इज आउट टू गेट यू. प्रोनोया is exact opposite. It's believing with everything you have that the universe is secretly rigged in your favor. And this one belief changes everything. Because when you believe that the world is against you, you play scared, you hesitate, you see every setback as proof that you're not meant to win. But winners, they've trained their brains to see the opposite. They take every single bad thing and truly believe it happened because the universe is conspiring to make it all work. They decided the universe was on their side and then they moved like it was true. So they kept going when you would have quit. They saw opportunity where you saw rejection. They bet on themselves when you played it safe. Same world, same problems, but they believed it was all happening for them and that belief changed the entire game.
1: Exactly. एक छुटकू सा डिफरेंस है उस लकी इंसान में और आप में, दैट दे बिलीव कि वट एवर दे आर गोइंग फॉरवर्ड विथ विल एक्चुअली वर्क आउट बिकॉज यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर देम. हम यूजुअली यही सोचते हैं कि यार अगर मेरी चीज़ें नहीं हो रही है, लाइक आई हैव डिसाइडेड कि मैंने ये काम करना है और वो नहीं हो रहा है, तो आई विल गो डाउन दैट स्पाइरल कि भाई मेरे साथ यही होता है, नोबडी वांट्स मी टू विन, सब यही चाहते हैं, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं. पर ऐसा नहीं है. आप यूनिवर्स को अपने लिए काम करवा सकते हो यार, बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसकी केपेबल हूँ, फिर तो कोई नहीं रोक सकता. प्रोनोया शुड बी द वे टू लीड द लाइफ मेरी जान. एंड फिलहाल भेज रही हूँ रहमान साहब और बेरी दयाल की आवाज़ में बड़ा सुंदर गाना दिल्ली छह से रहना तू. स्टे ट्यून्ड.

0: Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: रेडियो ऑलिव पे, रेडियो ऑलिव पे, स्टोरी ऑफ द डे।

0: तनिषा
1: मेरा नाम गोविंदा नो गोविंदा नाम मेरा मूवी से बिटवीन द वॉइस ऑफ मीका सिंह एंड नेहा कक्कर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया है ब्लैकबोर्ड स्टोरीज के सवाल का रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज और आज का जो सवाल है वो एक्चुअली एक पजल है सो आई एम गोना टेल यू द पजल आपने मुझे उसका करेक्ट आंसर बताना है ठीक है सो द पजल इज आई कीप वॉकिंग और आई कीप मूविंग बट आई डू नॉट गो एनीवेयर मैं चलता रहता हूँ पर मैं कहीं जाता नहीं व्हाट एम आई क्या है वो चीज़ जो चलती रहती है लेकिन वो कहीं जाती नहीं 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर Something which keeps moving but doesn't go anywhere. What is that thing? Yeah, आपने मुझे बताना है. फिलहाल भेज रही हूँ fresh song of the hour for you. एतबार in the voice of Fahim Abdullah from the movie चांद मेरा दिल. बहुत सुंदर मूवी है. रोई थी मैं भर भर के इसे देख के. You're listening to Radio Olive. Stay tuned and you with us, maybe Jan.
0: Radio

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Padmavat movies and Arijit Singh ke awaaz mein din te dil only on Radio Ala 106.3 FM. Tanisha aapke saath bin 10 mornings chal rahe hain ab. Radio Ala presents Blackboard Stories. ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज मैंने पूछा था कि इट वाज अ पजल. मैं चलता रहता हूँ पर कहीं जाता नहीं. व्हाट एम आई? आई कीप मूविंग बट आई डू नॉट गो एनीवेयर. व्हाट एम आई? एंड आई हैव गॉट करेक्ट आंसर्स ओवर हियर. यस, मुझे अस्मा का मैसेज आया है, मुझे अयान का मैसेज आया है, जैन, स्नेहा और जेड लिखा है इनके नाम पे. यस, एंड देन देयर इज समवन जिनके सिर्फ इमोजीज बने हैं, नाम नहीं है. तो सबने करेक्ट आंसर दिया है. कहने की बात बस ये है कि करेक्ट आंसर इज घड़ी, क्लॉक. यस, इट कीप्स मूविंग बट इट डजंट गो एनीवेयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. मेरी जान, इसी बात पे आप जीतते हैं एक कमाल का गाना गुरु रंधावा की आवाज में, साथ में हीर फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो रूप दी रानी. लौट कर आती हूँ, फिर बात करेंगे थोड़ी मौसम की. स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आर जे निशा को बिंदास मॉर्निंग में.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: सोनू के टीटू की स्वीटी से गाना सुना आपने वाली और रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं पर इसका जवाब तो आप जानते हैं रोज ही दे देती हूँ मैं लेकिन वेदर की बात करते हैं राइट नाउ इट इज 37 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 37 थैंकफुली ये ज्यादा नहीं है और ना ही एग्जैक्ट ऑपोजिट नंबर्स जैसे यस्टरडे आई थिंक इट वाज 34 और समथिंग एंड देन इट फेल्ट लाइक 43 सो वैसा कोई सिस्टम आज नहीं है लेकिन इट इज गोना बी वेरी हॉट टुडे बहुत सारी सनशाइन मिलेगी पर डिहाइड्रेशन का डेंजर है और हीट स्ट्रोक का भी डेंजर है सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा यू नो स्टे हाइड्रेटेड कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर वट एवर यू वॉन्ट यू नो वो साथ रखिएगा ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और खाना बहुत लाइट खाएं ठीक है जो ज़्यादा ऑयली ना हो अपनी सेहत का ख्याल रखिए मेरी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है सो जो हाईएस्ट टेम्परेचर आज जा सकता है वो 47 डिग्रीज होगा और जो लोएस्ट है वो 36 डिग्रीज होगा ठीक है सो ये मौसम का हाल है साथ में यहाँ मुझे मैसेजेस आए हैं इदरिस और अरूप जी का मैसेज आया गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड बिलाल जी का भी गुड मॉर्निंग आया है गुड मॉर्निंग टू यू बिलाल जी हाउ इज राबिया जी उनके मैसेजेस नहीं आ रहे मुझे कहीं दिन से तो उन्हें कहिएगा मैं याद कर रही थी सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वेस्ट ई ट्यून ऑन जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा,

0: Tanisha.
1: उदित नारायण और कैलाश खेर साहब की आवाज में यूं ही चला चल रहा है ब्यूटीफुल ट्रैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एवर 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. हमने कुछ देर पहले वेदर की बात की कि बहुत ज़्यादा गर्म है, इट्स वेरी हॉट एंड काफ़ी डिहाइड्रेशन का खतरा है, सो ख्याल रखिएगा अपना. लेकिन इंडिया में भी बहुत क्रेजी गर्मी हो रही है और ह्यूमिड लेवल्स तो अलग चल रहे हैं. तो देर वॉज दिस वुमन हु रिवील्ड कि उनके जो हस्बैंड हैं जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो एसी का रिमोट साथ ले जाते हैं बिकॉज वो घर पे सीक्रेटली बैठ के एसी ना यूज़ कर ले क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है. एंड वो तो माय फादर आल्सो यूज्ड टू से कि भाई तुम रूम में बैठ के डूम स्क्रॉल कर रही होती हो एसी चला के, बिल का कोई सोचता नहीं है, यू नो द यूजुअल टॉक्स. बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी कि वो ऑफिस ले जाता है एसी का रिमोट सो दैट उसकी वाइफ घर पे एसी ना यूज करे उसकी एब्सेंस में. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेज ही इज टेकिंग. आई डोंट नो, आई मीन आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दैट. आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा. और कुछ ही देर में हम बात करेंगे कि एसी का जो स्ट्रेस है वो हमें कतर में नहीं होता. आप बहुत सारी जगह है जहाँ पर इस समर को भी इंजॉय कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ फुल्ली एयर कंडीशनड. उन जगहों की बात करेंगे कुछ ही देर में, लौट कर आती हूँ. फिलहाल सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में रौला पै गया. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
2: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
1: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. Tere waaste Varun Jain ki awaaz mein suna aapne. And we were talking about the weather. India mein kaise ek husband AC ka remote office lekar chala jata hai so that uski wife jo hai wo uski absence mein AC use karke electricity ka bill na badhate. And ye wala stress hame Qatar mein nahi hai because almost all the places we go तो हमें वहाँ एसी मिल जाता है और बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप इस समर में भी खुल के इंजॉय कर सकते हैं. जैसे आप जीवन आलिन जा सकते हैं, वहाँ पर जो आउटडोर वॉकवेज हैं दे आर कूल, पब्लिक स्पेसेस भी एयर कंडीशनड है एंड आपको ये समर की हीट नहीं रोक सकती टू इंजॉय दोज अमेजिंग प्लेसेस. देन यू कैन गो टू सेंट्रो एंड कटारा कल्चरल विलेज, वो भी आउटडोर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ है. एंड प्लस जा सकते हैं अल हजम मॉल, वेस्ट वॉक, एनी मॉल फॉर दैट मैटर यू कैन गो. एंड यू नो लुसेल बुलेवार्ड इज ऑल्सो एयर कंडीशनड. सो ऑल दीज प्लेसेज आर देयर. देर आर सो मेनी पार्क्स वी हैव इन कतर जहाँ पर वॉक करने के लिए एयर कंडीशन स्पेसिस बना रखी हैं, कूलिंग सिस्टम्स लगा रखे हैं. सो इट बिकम्स वेरी ईजियर एंड आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी कंटिन्यू रहती है. अदरवाइज यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट आउट बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी समर्स में स्पेशली. विंटर टॉलरेबल है यार, आई डोंट नो ये समर लाइक करने वाले लोग, मुझे इन पर भरोसा नहीं होता है, सॉरी बट या. स्टे ट्यून, लौट के आती हूँ कुछ देर में. जियो बिंदास. जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का.
2: सब तेरा
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफ विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: शालमली कुलकर्णी की आवाज में परेशान फ्रॉम द मूवी इशक ज़ादे ओनली ऑन रेडियो 11.6.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और जितने भी फोटोग्राफर्स हैं और फोटोग्राफी लविंग लाइक पैशनेटली करते हैं उनके लिए एक बढ़िया चीज़ है तस्वीर फोटो फेस्टिवल कतर हैज ओपन देयर एप्लीकेशन फॉर इट्स 2026 to 2027 residency program. Yes, so if you were waiting for it or if you're interested, do go and check it out. This program is designed to support photographers and lens-based artists from Qatar, West Asia and North Africa region. Aur jo selected participants honge, unko mentorship milegi from experienced artists and industry professionals. They will have the access to workshops, studio visits and networking opportunities bhi hongi. और गाइडेंस भी मिलेगा टू डेवलप एंड रिफाइन देयर फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स दिस रेसिडेंसी एनकरेजेस आर्टिस्ट टू एक्सपेरिमेंट कोलैबोरेट एंड स्ट्रेंथन देयर क्रिएटिव प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है तो अगर आपके पास एक कला है उसको तराशिए और लग जाइए बस उसमें इट एम्स टू नर्चर इमर्जिंग टैलेंट एंड प्रमोट कंटेम्प्रेरी फोटोग्राफी अक्रॉस द रीजन ये जो इनिशिएटिव है इट्स अ पार्ट ऑफ तस्वीर फोटो फेस्टिवल कतर जो कि कतर म्यूजियम ने लॉन्च किया है टू सेलिब्रेट एंड सपोर्ट फोटोग्राफी एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग तो जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपना काम दिखाने की थ्रू तस्वीर प्रोग्राम्स एंड एग्जिबिशंस तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गो चेक इट आउट एंड अप्लाई फॉर इट एंड गुड लक मेरी जान सेंडिंग जुगनी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Mithun Arshil Baragi has made the train say bo ajnabi only on radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain ab.
2: Wellness fix
1: में आज छोटी छोटी सी tricks बताऊंगी जो चीजें commonly होती रहती हैं हम सबको उनको कैसे control किया जाए. And the first one is motion sickness. काफी लोगों को motion sickness होती है तो उससे उसे control करने का जो nausea होता है motion sickness में उसे control करने का सबसे आसान तरीका है to smell a green apple. Green apple की जो smell है it reduces the nausea. जी एंड ये तो आई थिंक सबको पता है. टायर्ड फील कर रहे हो तो एक कॉफ़ी पी लो बिफोर अ 20 मिनट नैप. इट विल हेल्प यू वेक अप मोर अलर्ट. लाइक इफ यू आर टायर्ड यूर लाइक ओके मेरे को एक नैप ले लेना चाहिए तो वो नैप के पहले कॉफ़ी पियो एंड देन यू टेक द नैप. तो जब आप उठोगे ना तो रिफ्रेश और री एनर्जाइज्ड फील करोगे. देन अगर ब्रेन फ्रीज हो रहा है तो प्रेस योर टंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ. इट विल हेल्प ईज इट. यस एंड इट डज हेल्प. हाँ आई हैव ट्राइड. अगर स्टफी नोज है तो हम करो थोड़ी देर. इट विल हेल्प ओपन योर नेजल पैसेज. और स्टफी नोज इज सुपर अनोइंग. तो बहुत ही आसान सा तरीका है. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू हम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड इट विल हेल्प यू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट. अगर नर्वस फील कर रहे हो तो च्युइंगम को च्यू करो. च्यू गम बेसिकली. इट विल हेल्प यू फील कामर क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है. यू नो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स यू फील कामर. सो दीज आर अ फ्यू छोटी मोटी ट्रिक्स जो कि छोटी मोटी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है इमीडिएटली आपके लिए. फिलहाल भेज रही हूँ एक बहुत ही सुंदर गाना जल बैंड से आतिफ असलम की आवाज़ में. आदत स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: Alif Bey. Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: रेडियो ऑलिव पे। रेडियो ऑलिव पे। Story of

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.
3: जब तक से सब तेरा तक,
4: जब तक,
3: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
4: सब तेरा।
3: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

अरमान मलिक की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. वैकी विजडम में आज हम बात करेंगे सोल माइंड कन्वीनियंस स्टोर की. जी हाँ, सो कोरिया में सोल में एक माइंड कन्वीनियंस स्टोर खोला गया है जहाँ इट इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी वेलनेस स्पेस. सो इफ़ यू आर लिविंग अलोन और यू आर जस्ट फीलिंग लोनली एंड यू नो यू जस्ट वांट टू टॉक टू समबडी और यू जस्ट वांट अ प्लेस टू सिट क्वाइटली, आपको बात भी नहीं करनी है किसी से, आपको सिर्फ कहीं जाकर बैठना है या फिर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं, वो सारी ऑप्शन हैं वहाँ पे. आप वहाँ बैठ के रामेन इन्जॉय कर सकते हैं, यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, मसाज चेयर्स हैं, फूड स्पाज हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, मूवी भी देखनी है उसके लिए भी जगह है. या फिर वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं और सिंपली यू कैन जस्ट सिट एंड स्पेंड सम क्वाइट टाइम विद योरसेल्फ. देयर इज़ नो प्रेशर टू सोशलाइज. और अगर बहुत ज़्यादा ये लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, यू कैन टेक अ शॉर्ट असेसमेंट एंड अगर ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं या फिर सपोर्ट प्रोग्राम्स के साथ जुड़े रह सकते हैं. सो द इंटायर आइडिया इफ ऑफ दिस माइंड कन्वीनियंस स्टोर इज़ to make soul without loneliness. Yes, and this is such a beautiful idea kyunki कभी कभी प्रेशर फील होता है, यू नो, गोइंग टू सच प्लेसेस, कैफेज इन ऑल में. सो ये जो कन्वीनियंस स्टोर है, माइंड कन्वीनियंस स्टोर, इसका आइडिया बेसिकली ये है कि आपको कोई प्रेशर नहीं है. आप जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं कुछ खरीदने या फिर नॉर्मल किसी स्टोर में जा रहे हैं, तो वहाँ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है. यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट, यू चेक आउट द आइल एंड ऑल. सो सेम वही फीलिंग है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो वहाँ कर सकते हैं, वक्त बिताएं वहाँ पर. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन प्ले विद देम, यू कैन रीड बुक्स विद पीपल. इफ़ यू डोंट वॉन्ट, जस्ट डोंट टॉक. एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल आइडिया. आई थिंक द अदर सिटीज, अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस, बिकॉज we at times need that either me time or we want to meet new people, but for that moment of time, you know, it's not necessary ki jis bhi naye insaan se aap mil rahe ho usko apni life mein jagah deni hi hai. इट्स ओके, आप थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, उनसे एस्केप करने के लिए, उनसे कटआउट करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ऑन दैट नोट, सेंडिंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक आदित्य लिखारी की आवाज़ में, ए अजनबी, स्टे ट्यून्ड, बिंदास रेडियो.

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: ए दिले मुश्किल से क्यूटी पाई ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन दैट इज PHCC ने लॉन्च कर दिया है केयर समर प्रोग्राम. अर्ली अगस्त में ये स्टार्ट हो जाएगा और ये जो प्रोग्राम है ये फ्री फील्ड ट्रेनिंग देता है स्टूडेंट्स को एज 12 to 18 इंक्लूडिंग बोथ कतरी सिटीजन एंड रेसिडेंट्स स्टडिंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. तो देखो अभी वेकेशंस चल रहे हैं एंड दिस इज सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव. If you are interested, go for it. And it will run from August 3rd to 26th August, Mondays, Tuesdays and Wednesdays. Aur students jo hai, wo choose kar sakte hai, do daily shifts mein se koi bhi ek. Morning ki hai 10 to 1 p.m. aur evening ki hai 5 to 8 p.m. Ye jo program hai, it includes 12 training days, totaling 36 hours of practical field training. And it will be held at PHCC health centers across Qatar, Al-Mashaf, Al-Khor, Al-Wakra, Lebab, Rawdat, Al-Khail, Salal. And jitne bhi log isme register karenge, participate karenge, they will learn about primary healthcare services, healthy lifestyle, public health awareness, teamwork and communication skill, career opportunities in healthcare sector. So, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करेगा टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट दैट अर्ली एज और लाइफ स्किल्स डेवलप करेगा उनकी एंड इट विल इंस्पायर इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर करियर ड्यूरिंग द समर ब्रेक. सो इफ दैट इज समथिंग विच इंटरेस्ट यू, गो फॉर इट. बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है एंड सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: सुरेश वाडकर और आशा दाई की आवाज में कमाल का गाना बोलिए ऑल रेडी ऑल 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. एक बहुत बड़ी अपडेट आ गया है जी. सो ये वाली परेशानी मैंने भी बहुत झेली है इंस्टाग्राम पे कि आप एक पिक्चर या फिर कोई रील अपलोड कर देते हैं एंड देन उस वक्त जो आपको गाना समझा आपने वो लगा दिया वहाँ पे ऑडियो लगा दिया. नाउ लेटर ऑन यू रियलाइज अरे नहीं यार ये वाला गाना ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है. पर तब तक उस पिक्चर और पोस्ट वीडियो वट एवर यू हैव पोस्टेड उस पर व्यूज़ आ चुके होते हैं, कॉमेंट्स आ चुके होते हैं, लाइक्स आ चुके होते हैं, शेयर्स आ चुके होते हैं. फिर लगता है अरे यार अब मैंने डिलीट करके री अपलोड करी तो शायद रीच चली जाएगी है ना. बट मजेरी एडम मजेरी ने कह दिया है कि नाउ यू कैन चेंज और एडिट योर म्यूजिक आफ्टर पोस्टिंग योर रील और फोटोज. आपको उसको डिलीट करके री अपलोड वाला स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आपने कर दिया पोस्ट, दो दिन बाद आपको लगा कि अरे नहीं ये गाना परफेक्ट है, ये ऑडियो सही बैठेगा, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं. एंड आई लव दिस वन. बहुत ही बढ़िया वाला ये जो अपडेट है लेकर आए हैं. कुछ टाइम से तो लास्ट यू नो बहुत ही स्टूपिड और लेम और यूजलेस टाइप के अपडेट्स आ रहे थे. एक इंस्टेंट मुझे आज तक वो नहीं समझा, मैंने आज तक एक भी नहीं डाला है. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, वी हैव स्टोरीज राइट. एंड आई डोंट नो, इनिशियली तो ये हो रहा था लोगों के साथ कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, दे आर जस्ट क्लिकिंग एंड उन्हें नहीं पता है कि आप जो क्लिक करें वो जा रहा है इंस्टेंट पे. फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों को, सो दे हैव स्टॉप्ड. बट या हैव यू यूज दैट और नॉट, बताएं मुझे, शेयर कीजिए 3311063 पर. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड, बिंदास मेरी जान.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Bindas mornings chal rahe hain aap par. Aur yaad dila rahi hu ek baar phir se aapko. कि पहले तो स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट है मेरी जान. आपको कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं. ऑल्सो इफ यू हैव बीन फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया ये तो क्या कर रहे हो यार, कितनी बार बताना पड़ेगा. रोज बताऊंगी, नो वरीज. radioolive.qa इज द हैंडल. फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह फॉलो कर दो, स्पैम कर दो और चेकआउट करो जो भी स्टोरीज और पोस्ट वी आर पोस्टिंग अपलोडिंग वो आपके लिए ही है. सो इंटरैक्ट कीजिए उनके साथ. इफ देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन विच इज गोइंग ऑन देयर सो चेक इट आउट एंड पार्टिसिपेट कीजिए उसमें. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग. और अभी कतर टॉय फेस्टिवल की टिकट्स भी मिल रही हैं तो वो भी चेकआउट करो, उस कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करो और कतर टॉय फेस्टिवल की टिकट्स जीत जाओ. फिलहाल अरमान मलिक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उनका एक स्पेशल गाना घर से निकलते ही, ब्यूटिफुल ट्रैक एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट स्टोरी जो जावेद अख्तर साहब ने बताई थी इस गाने को लिखने की, कि कैसे रास्ते में चलते चलते गाड़ी में लिखा है उन्होंने क्योंकि उन्हें खौफ था. जी हाँ, ठीक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. फिलहाल अरमान मलिक की आवाज़ में गाना इन्जॉय करते हैं. सुंदरिया रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान. जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक,
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का.
2: सब तेरा.
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: poşude.
1: Danisha.
2: Danisha. Her şurası gibi azmi. Ne yapış de oluyor radio ale 106.3 FM tani şey yapki. Saat 10 morning çal rahe yahan par. Aur vakt ho gaya hai meri jaane ka meri jaan it's 9:50 51 होने वाला है yes और breakfast का भी time हो गया भूख लग गई भाई मुझे बहुत जोर से but कल है Thursday and the weekend is approaching तो obviously कल ऐसे weekend के लिए पूरा तैयार करना है आपको तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करके मैं आऊँगी कल मिलते हैं आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है stay hydrated do not forget that ठीक है आप बहुत important हैं अपना ख्याल रखा कीजिए and if you haven't followed us yet on social media radioolive.qs is the handle follow कर लो फटाफट से और सुनते रहो Radio Olive 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

कमाल मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। मोस्ट इररिलेवेंटली रिलेवेंट मूवी थी ये, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि प्यार में जो है एक सेटबैक आने के बाद लड़का ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो जो है पूरी दुनिया को दिखा देता है कि मैं कैसे परफेक्ट हूँ, लेकिन इसमें उल्टा हुआ था, लड़की ने अपने आप को प्रूव किया था यार। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलव से, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड देखिए यार, बस इस शो के जरिए मेरी इतनी सी कोशिश होती है कि आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना दूँ, मतलब आपके स्ट्रेस को दूर कर दूँ, बस आपको जो है खुशी के कुछ पल दे दूँ, एटलीस्ट खुशी के कुछ तीन घंटे दे दूँ। तो बस आज भी शो में हम रोज़ की तरह बहुत अमेजिंग बातें करने वाले हैं। बॉलीवुड की बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके स्ट्रेस को कम करने की, मूवी रिकमेंडेशंस भी आपके लिए लेकर आ गई हूँ और साथ में फैशन ट्रेंड्स में क्या कुछ खास चल रहा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन लेकिन लेकिन उसके लिए आपको एकदम चिपक के बैठना पड़ेगा अपने रेडियो सेट से। सो स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर एंड अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो भी मैं आपके लिए प्ले करती रहूंगी। सबसे पहले तो पति पत्नी और वो दो से अंगड़ाई गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पे। हाँ जी, स्ट्रीक तोड़ दी है मैंने, हर रोज जब मैं आ रही थी ना तो कॉकटेल 2 का सबसे पहले कोई गाना सुनाती थी, लेकिन आज पति पत्नी और वो दो से एक अमेजिंग ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी बातचीत तो देखो हम करते ही रहेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ये गाना जो है इसे एंजॉय करके वापस आइए, फिर जरा मैं बताती हूँ कि मौसम का क्या मामला है। मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: Check. Brought to you by Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: हाँ जी, तो आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11, दैट इज 10:11। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: पपॉन की आवाज में ये क्यूट सा गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए अपना शो लाइफ मस्त है मैं लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, मतलब कुछ गाने होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ गाने होते हैं जो एकदम ही ब्रेन रॉट होते हैं, और कुछ गाने होते हैं जिनको सुनकर आपको जो है अपने पैरों को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं नहीं मत नाचो, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते हो, इतने अमेजिंग गाने होते हैं। लेकिन ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये एकदम क्यूट सा है। इसमें मतलब थोड़े से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्रिंज है, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्यार में है या आप किसी को इमेजिन कर रहे हैं तो आपको क्यूट भी लगेगा। सो देखो, मतलब गानों को जो है इसी तरीके से बनाया जाता है कि वो अलग अलग एज ग्रुप्स को टारगेट कर सके। वैसे देखो, टारगेट तो इस वक्त हमें हीट कर रही है और साथ में ह्यूमिडिटी भी कर रही है। सो देखो, अभी जो है अगर मैं आपको टेम्परेचर बताऊं तो दोहा का करंट टेम्परेचर हो रहा है 43 डिग्री सेल्सियस, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर आप मानोगे नहीं, मतलब मान जाओगे, वैसे तो आपको पता ही है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर आज 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस। तो यानी जो है हीट ऑन इट्स पीक रहने वाली है, लेकिन इस समर हीट को बीच करने के लिए कुछ म्यूजिकल बीट्स जो है वो हम आपके लिए लेकर आ गए। कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। एकदम कूल कूल हो जाइए इस कूल गाने को सुनकर। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ। हाँ जी, खबर आई थी ICU में है वो। सो इसके पीछे का क्या सच है और क्या हुआ है उन्हें, ये मैं बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

अरे मैडम, ये चोरी चोरी चुपके चुपके और लूटने उठने के बाद देखो हमारे यहाँ मत क्या करो, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को ना समझ नहीं आता, उनको सच में लगता है कि कोई चोरी हो गई है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यू नो हमारे यहाँ के लोगों को ओवर एक्सप्लेनेशन की आदत है। हम अगर सरकास्टिक टोन में बात करते हैं या अगर यू नो मेटाफर में बात करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि अगर लोगों ने कहावत में बोल दिया तो वो सच में पूछने लग जाएंगे कि हाँ

कौन सा तिनका? किसकी दाढ़ी में? चोर कहाँ है? अरे चोर की दाढ़ी में तिनका जो है वो एक यू नो कहावत होती है. सो बस ऐसा ही कुछ जो है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ भी हुआ है. सो अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे पास पोस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे जहाँ पर ये लिखा रहा था कि अमिताभ बच्चन जी जो है वो आईसीयू में एडमिट है, अमिताभ बच्चन जी की सर्जरी होने वाली है, अमिताभ बच्चन जी काफ़ी बीमार हैं. उन्होंने ट्विटर पे ये मतलब एक्स पे ये पोस्ट किया है, ट्वीट किया है कि मैं बहुत ज़्यादा हार चुका हूँ एंड मुझे घर जाना है, लेकिन जो है मेरी कोशिश जारी है. ये सब उन्होंने लिखा था एंड लोगों को ऐसा लगा कि यार ये आईसीयू में इनकी जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है. अब कल परसों जो है अमिताभ बच्चन जी ने फिर से एक ट्वीट किया एक्स पे और उन्होंने ये लिखा कि मैंने जो है ऐसे सरकास्टिक टोन में बात करी थी, मैं आईसीयू में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गॉड फॉरबिड मुझे कुछ हो, लेकिन मैंने जो है ये अर्जेंटीना के लिए लिखा था क्योंकि उस दिन जो है मैच चल रहा था एंड क्योंकि अमिताभ बच्चन बिग बी जो है वो इतने बड़े फुटबॉल फैन हैं तो उन्हें क्या है ना कि उन्होंने मेटाफर पे बात की थी कि हमारी जो टीम है वो बहुत बुरी तरीके से हार रही है, उनकी हमारी टीम की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे वो क्रिटिकल केयर यूनिट में हो, आईसीयू में हो, तो बस अभी उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है जिससे वो जीत जाएं. सो ऐसे जो है ऐसे बात करी थी उन्होंने, सरकास्टिक टोन में बात की थी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं जो हूँ वो बीमार हूँ. इसीलिए हमारे यहाँ ना बहुत क्लियर क्लियर बात करनी इम्पॉर्टेंट है, वरना फिर बाद में समझाना पड़ता है कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था, अरे मैं ऐसे नहीं कह रही थी, मुझे आपको जो है हर्ट करने का बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं था. तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत क्लियर क्लियर बात करनी चाहिए. आप लोग भी ये ध्यान रखना कि क्लियर क्लियर बात करें. तो देखो मैं भी एक क्लियर क्लियर बात आपको बताना चाहती हूँ कि चम्मक चलो छैल छबीली जो एक चटपटा गाना है ये आ रहा है आपके रेडियो सेट पर राउडी राठौर मूवी से सोनाक्षी सिन्हा एंड अक्षय कुमार अमेजिंग डुओ. सो ये गाना जो है आप इंजॉय करके आइए वापस. मैं जो है फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपके स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है. फिलहाल चम्मक छल्लो छैल छबीली ऑन योर रेडियो सेट्स, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।
0: रेडियो ऑलिव पे। रेडियो ऑलिव पे। Story of

0: भाई ये गाना इतना एनर्जेटिक है, इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है कि अगर मैं अपने लाइफ के लोएस्ट पे भी होती हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं गशिश, अभी उठ के अभी हम कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम आपके लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। एंड स्ट्रेस अगर आपको हो जाता है बात बात पे, तो देखो मैं बस इतना आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो होने के लिए ही बना है, सो स्ट्रेस को होने दो, लेकिन उसको जो है मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा मत चलने देना, वरना वो जो है आपको जो है एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब दे सकता है। सो अगर आपने अपने जो है एंजाइटी पर अगर 10 मिनट में काबू पा लिया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बस इस फ्रेश अपडेट के साथ जो है एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, बाकी अमेजिंग बातें जो है गानों के उस पार करेंगे।
1: रेडियो

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: जब तक से सब तेरा तक,
3: जब तक,
2: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
3: सब तेरा।
2: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 11:11 यानी 11:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: हाय दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव.

0: वैसे तो देखिए ये जो गाना है ये हम दिल दे चुके सनम का है, निबड़ा निबड़ा, लेकिन इसे जो है आजकल किताबों में भी लिखा जा रहा है। हाँ, अगर आपने पहले जो है मेरा शो फॉलो नहीं किया तो आपको ये जो है राज पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहती हूँ यार थोड़ा ध्यान से सुना करो मुझे, देश दुनिया की अमेजिंग अमेजिंग खबरें जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार देखो लाइफ मस्त तब होती है जब हमारा दिमाग और हमारा दिल जो है वो सेम चीज कह रहा होता है। लेकिन ये जो दिल है ये दिमाग की क्यों नहीं सुनता, और ये जो दिमाग है ये हमेशा दिल की जो है सुनने से मना क्यों कर देता है? क्योंकि दिल और दिमाग में बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एंड ये बिल्कुल मम्मी और पापा की तरह है कि मतलब मम्मी जो है वो बोलती है पापा से पूछो, पापा बोलते हैं जाओ मम्मी से पूछो और बेचारा बच्चा जो है वो मम्मी पापा की लड़ाई के बीच में कुछ कर ही नहीं पाता है, बस यही और दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में है। वैसे आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी दिमाग की बात क्यों कर रही हूँ, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ। हाँ जी, आज 22 जुलाई है, पूरी दुनिया में जो है आज के दिन वर्ल्ड ब्रेन डे जो है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी WFN ने 2024 में जो है की थी ताकि ब्रेन हेल्थ की अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जा सके। 2026 का थीम जो है वो भी बड़ा ही अमेजिंग है, ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, यानी हर किसी के ब्रेन का जो है हमें ख्याल रखना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से उन्हें बचाना है। क्योंकि दुनिया भर में लगभग 42% लोग यानी 3.4 बिलियन लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो किसी ना किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जो है वो जूझ रहे हैं, बस इसीलिए जो है इस दिन को जो है शुरू किया गया था। अब देखिए आपको लगता है ब्रेन कितना आसान सा शब्द है, BRAIN, हरा, लेकिन इस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं ऐसे ब्रेन के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होंगे। हमारे ब्रेन में लगभग 75% पानी होता है, एंड मतलब हमारे ब्रेन की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है ना कि 20 वॉट की बिजली जो है अगर ह्यूमन ब्रेन को चलानी पड़े तो कॉन्स्टेंटली चाहिए। ब्रेन बॉडी का जो है सबसे फैट रिच ऑर्गन होता है जिसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी आपके पेट में नहीं आपके ब्रेन में है असली कोलेस्ट्रॉल। देखिए अब ब्रेन फ्रीज भी एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर सुनते हैं, तो जब आप जो है बहुत ठंडी चीज खाते हैं तो माइग्रेन की जो आर्टरीज होती है ना वो जो है थोड़ी सी अजीब सी बिहेव करने लग जाती हैं, जिससे एक हेडेक जो है वो शुरू हो जाता है जिसे आजकल ब्रेन फ्रीज कहा जाता है। अब देखिए यार ये तो हो गए ब्रेन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और ब्रेन डे क्यों मनाया जाता है मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन एक अब फन चीज मैं ऐड तो करूंगी ना अपनी तरफ से, बस इसीलिए अब जो है थोड़ी सी देर में कुछ गानों के इस उस पार जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फीमेल ब्रेन और एक मेल ब्रेन जो है वो किस तरीके से अलग होता है। अब चलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक उठा लेते हैं, आप लोगों के लिए जो है डिस्कशन ओपन कर देते हैं 3311063 पर। अगर आपको जो है मुझे ये बताना है कि दिमाग की ज्यादा कौन सुनता है, लड़के या फिर लड़कियां, मेल ब्रेन जो है उसकी ज्यादा सुनी जाती है, फीमेल ब्रेन की ज्यादा सुनी जाती है, यह आप मुझे बताइए 3311063 पर। इसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्या कहती है वो थोड़ी सी देर में मैं आके आपको बताऊंगी, तब तक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है इंजॉय कीजिए। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जय बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: हम बात करेंगे कि यार दिमाग की सुननी है या दिल की सुननी है, एंड किसका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, लड़कों का या लड़कियों का। वेलकम जी 106.3 रेडियो अल्फर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, मुझे ना काफी मजा आता है जब लोग जो है डिबेट करते हैं कि लड़कियों का दिमाग ज्यादा चलता है, लड़कों का दिमाग ज्यादा चलता है। देखो, दिमाग जो है वो दोनों का इक्वली चलता है और ये जो है साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं तो बस आप लोगों का जो है डिस्कशन शुरू करवाने के लिए ये सब जो है क्वेश्चंस अजीबो गरीब वाले जो है ये ड्रॉप कर देती हूँ। अब देखो क्या होता है कि वायरिंग जो है ना वो लड़कों के ब्रेन की और लड़कियों की ब्रेन की, यानी मेल ब्रेन की और फीमेल ब्रेन की, अलग अलग तरीके से की गई है। हाँ जी, जिस तरीके से आपको अगर हेयर फॉल हो रहा होता है तो आप हेयर फॉल एक्सपर्टी वाला शैम्पू लेकर आते हो, और अगर जो है आपको बाल स्मूथ करने होते हैं तो अलग शैम्पू लेकर आते हो। बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल के हिसाब से ब्रेन को वायर किया गया है ऊपर वाले के थ्रू। अब देखिए यार, अगर मैं बात करूं लेडीज के ब्रेन को जो है किस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है, तो उन्हें ना डिसीजन मेकिंग और मल्टीटास्किंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो वो फोकस ज्यादा कर पाती हैं मल्टीटास्किंग करने पर एंड सेल्फ कंट्रोल पर भी, और वर्बल कम्युनिकेशन में भी लड़कियां इसीलिए आगे होती हैं। वहीं पे अगर हम लड़कों की बात करें तो वो किसी भी एक चीज पर जो है फोकस करते हैं, वो सिंगल टास्क और कोऑर्डिनेटेड एक्शन पे जो है बिलीव करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लड़कों का जो फोकस है वो एक बार में एक चीज पे होता है, एंड लड़कियां जो है वो एक टाइम पर मल्टीपल चीजों पर ध्यान दे पाती है। सो आज वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन हमने ये सीखा कि ब्रेन जो है वो लड़कों का तेज या लड़कियों का तेज नहीं होता, दोनों का इक्वली होता है, बस जो है डिजाइन अलग तरीके से किया जाता है। अब देखिए, अब विंटेज कार को जो है F1 की रेस में तो नहीं चला सकते ना। सो बस यही था मेरा थॉट जो साइंटिफिकली प्रूवन है। बाकी आज अगर आपका बर्थडे है तो आप एक बहुत ही क्यूट इंसान से अपना बर्थडे शेयर करते हैं, और वो है अरमान मलिक। सो अरमान मलिक को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए हम आगे बढ़ते, उनका एक अमेजिंग गाना चले आना जो है आकर, मतलब चल कर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। सो इस गाने को एंजॉय कीजिए, अरमान मलिक को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, और अगर आपका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे सो हैप्पी बर्थडे और स्टे ब्लेस्ड, एंड ये गाना एंजॉय करो, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
2: सब तेरा।
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन. ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के. और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू. दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है. हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे.
1: रेडियो ऑलिव पे. रेडियो ऑलिव पे. स्टोरी ऑफ

0: Uplift 106.3 FM Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon. और मेगा ड्रॉ

0: माय गॉड, ये गाना जो है एक एग्जाम्पल है, मतलब सच में दंगल में जो है मैंने देखा था जब सानिया को, तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इतना अमेजिंग डांस करती हैं एंड सुनिधि चौहान के साथ मिलके इतना अमेजिंग बैंगर जो है वो लेकर आएंगी हमारे लिए। गाने का नाम मार्क, सुनिधि चौहान की आवाज में मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑल पर। अब देखिए यार, वक्त हो गया है आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने का। हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हम मूवी जो है लवर हैं, तो हमें बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेज रहता है कि कोई अच्छी मूवी हमें रिकमेंड कर दे और हम फटाक से जाकर अभी जाके देख ले। तो बस आज की मूवी शायद आपने देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। ये जो है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और रियलिस्टिक मूवीज़ में से एक है। ये फिल्म दिखाती है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ पैसे से नहीं कमाया जाता, बल्कि लोगों के दिल जीतने से जो है बढ़ाया जाता है। सो मूवी का नाम है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। रणबीर कपूर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। थोड़ी सी अंडररेटेड मूवी थी, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग इसे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो हरप्रीत सिंह के रूप में जो है आपको रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे, एंड क्या कमाल एक्टिंग की है। एक सिंपल क्लीन जो है लुक कैरेक्टर इन्होंने अपनाया है, एक नेचुरल तरीके से अगर कोई एक्टर पोर्ट्रे कर सकता है तो वो जो है इन्होंने किया है। एंड साथ में अगर मैं सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो सबने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। रियलिस्टिक बिजनेस लेसन जो है वो आपको इस मूवी में मिलेंगे, तो यानी अगर आपका कोई स्टार्टअप है या आप किसी बिजनेस को जो है ओन करते हैं, तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बहुत रियलिस्टिक लगेगी, एंड हो सकता है कि आपको कुछ टेक अवे जो है वो भी मिल जाए इस मूवी से। नो ओवर द टॉप ड्रामा, सो कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है कुछ जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। डायलॉग्स बहुत ही ब्रिलियंटली लिखे गए हैं, आपको हर जो डायलॉग है वो इतना रियलिस्टिक लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ऐसे कौन बात करता है। सो कॉरपोरेट कल्चर की रियलिटी जो है वो इस मूवी में चैलेंज की गई है, बहुत ही अमेजिंग है। वैसे आप देखो, मैं आपकी दोस्त हूँ, तो अगर आपको मूवी के प्लस पॉइंट्स बता रही हूँ तो माइनस भी बताऊँगी। सो थोड़ी सी स्लो पेसिंग मूवी है, यानी अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कब से चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ी स्लो पेसिंग पे है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है मूवी वैसे वैसे बढ़िया लगती है। बॉक्स ऑफिस पे जो है ऑफकोर्स अच्छा काम नहीं कर पाई थी, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो मेरा यही है कि रॉकेट सिंह एक ऐसी मूवी है जिसे हर उस इंसान को देखना चाहिए जो कॉर्पोरेट लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहा है या अपना नया बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहता है। ये फिल्म आपको सिखाती है कि बिना अपनी ऑनेस्टी और एथिक्स को बेचे, सैक्रिफाइस किए, आप अपनी लाइफ में सक्सेस जो है वो कैसे पा सकते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे यार कशिश इसे 5 में से कितने स्टार दोगे, तो मैं तो इसे 4.5 देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिलहाल ऑल ऑफ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, ये गाने इन्जॉय करके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे फैशन के ऊपर। फिलहाल वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Ye gana

Yes guys, birthday boy का amazing वाला गाना आ गया था आपकी रेडियो सेट्स पर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ 106.3 रेडियो एलिफेंट. एंड गाइस, जिस तरीके से एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं पानी, हवा, खाना, बिल्कुल वैसे ही मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है फैशन. फैशन की अगर मैं बात नहीं करती ना तो पता नहीं क्यों मेरा जी सा घबराने लग जाता है. तो बस अपने जी को घबराने से रोकने के लिए आज के फैशन ट्रेंड की बात कर लेते हैं. वैसे तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट चलाते हैं और थोड़े भी फैशन में यू नो इंडल्ज हैं, कुछ रील्स देखते हैं या पोस्ट देखते हैं, तो आपके सामने ये वाला हैंडबैग जरूर आया होगा. हाँ जी, हैंड बैग की मैं बात कर रही हूँ, बैग की मैं बात कर रही हूँ. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बैग है ये कहीं मिल नहीं पा रहा है तो लोग इसे जो है खुद बना रहे हैं, DIY. कल भी हमने DIY की बात की थी, आज भी हम DIY की बात कर रहे हैं. सो होता ये है कि ये जो बैग होता है उसकी जो स्ट्रैप होती है ये नॉर्मल स्ट्रैप ना होकर, उसकी कलर ना बदल के, लोग जो है अपनी जो घड़ियों का, पुरानी घड़ी का जो डायल होता है, रिस्ट वॉच के जितने भी अलग अलग टाइप के डायल्स होते हैं, उन्हें ज्वाइन करके ये जो स्ट्रैप है बैग की वो बना रहे हैं. एंड आई किड यू नॉट, अमेजिंग लगता है. मतलब देखने में इतना क्यूट, क्वर्की येट क्लासी लगता है. अलग अलग टाइप की देखो घड़ी जो है वो आपके कंधे पे लगी हुई है, कितनी बढ़िया लगेगी. और कोई टाइम पूछेगा तो आप सीधे अपने बैग की स्ट्रैप देखेंगे, बताइए कौन सी वाली घड़ी से आपको देख के टाइम बताऊं मैं. सो देखो, अगर आपके पास बहुत सारी घड़ियां हैं जो अब चलती नहीं है, ख़राब हो गई है या कहीं ना कहीं आप यूज़ नहीं करते हो, सो आप उनसे ये DIY कर सकते हो. ये इन ट्रेंड है एंड मुझे नहीं लगता कि अगर ये ट्रेंड से बाहर भी चला जाएगा तो भी ये मतलब ऐसा होगा कि यार इसको आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ये फिर भी यू नो फन ही लगेगा. सो फिलहाल एक काम करते हैं, फैशन की बातचीत से आगे बढ़ते हैं. आपको एक अमेजिंग वाला गाना मैं सुनाती हूँ, कोक स्टूडियो भारत का. सो ये गाना इन्जॉय करके वापस आइए, फिर ज़रा हम बात करेंगे एक बहुत ही यू नो अमेजिंग चीज पे, थोड़ी अलग सी चीज पे. स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:14. दैट इज 12:14. स्टे ट्यून रही जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: आई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.

0: ऑफकोर्स मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तभी तो हर रोज आ जाती हूँ एनर्जी के साथ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है। अब देखिए लाइफ मस्त तो जनरली होती है सबकी, मतलब जब भी कोई पूछता है ना कि और कैसा है सब कुछ, तो बोलते मस्त, भले ही लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बस उसी को सच बनाने के लिए, आपकी लाइफ को जेन्युइनली मस्त बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो भी आपके लिए ले आई हूँ। अब देखिए यार, आपको अगर अपनी लाइफ को थोड़ा और एक्स्ट्रा मस्त बनाना है और आपको ये कहना है कि यार कशिश रेडियो तो हम पूरा टाइम नहीं सुन पाते, क्या करें, अरे इंस्टाग्राम तो चलाते हो ना, सो बस इंस्टाग्राम पे जाओ, रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर, वहां पे हम बहुत फन फन वीडियोस जो है वो हर रोज पोस्ट करते हैं। रेडियो ऑलिव के जितने आरजेस हैं सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं इंफोटेनमेंट भी आपको मिलेगा, कुछ यू नो ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, आपको नहीं पता होगी, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो देखो यार, ऑल इन ऑल विन विन सिचुएशन है, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबा दो और जल्दी से जाके फॉलो कर लो। एंड बाकी एक अमेजिंग वाला कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय करो। उसके बाद आज एक स्पेशल डे है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर आज ब्रेन डे के अलावा और ऐसा कौन सा दिन है जिसे जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सो जितने भी लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्पेशल डेज के बारे में, उनके लिए एक स्पेशल बात जो है वो थोड़ी सी देर में हम करने वाले। फिलहाल अमेजिंग गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो। और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में ये ट्रैक आपने इंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कसूर शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ ऑन 106.3 रेडियो Yes guys, और वादे के अनुसार मैंने आपको जो है मैं बताने के लिए आ गई हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है। सो वर्ल्ड ब्रेन डे तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जितने भी लोग इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या जो है इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल फ्लैग डे है आज। यानी आज के दिन जो है इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट हुआ था और 22 जुलाई को पूरे भारत में जो है ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए यार, ये जो फ्लैग है ये जो है कुछ दिन पहले ही जो है जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके कुछ दिन पहले ही लिया गया था एंड इसको जो है बहुत सोच समझने के बाद जो है डिज़ाइन किया गया था। तो कुछ और भी फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आपको जो है पता करने की ज़रूरत है, लेकिन बस मेरा आज आपको बताने का मोटिव यही था कि यार पता होना चाहिए गाइस, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाती है और क्या पता मैं ही कभी आपसे पूछ लूँ और इसके बदले में कोई गिफ्ट आपको दे दूँ, है ना। फिलहाल बर्थडे बॉय अरमान मलिक की आवाज़ में एक अमेजिंग वाला ट्रैक जो है वो आपके रेडियो सेट में आ रहा है कुछ ही देर में, ज़रा ठहरो। हाँ जी, ये गाना जो है आएगा अभी आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी गजल, मुलाकात थोड़ी सी देर में होगी। जियो बिंदास।
1: जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
2: सब तेरा।
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Story of the day. Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन. ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के. और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू. दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है. हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे.
1: रेडियो ऑलिव पे, रेडियो ऑलिव पे, स्टोरी ऑफ द डे.

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया शहजादा मूवी से। मतलब यार मुझे कभी कभी सच में लगता है कि कार्तिक आर्यन जो है वो बॉलीवुड के शहजादे ही तो हैं। सो बस इनकी मूवीज को इनके गानों को एंजॉय करते हुए और आपके लिए कुछ और इनके गाने जो है वो ऑन द फ्लोर डालते हुए जो है मैं लेती हूँ आपसे विदा। अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, चाचा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। सो मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा एंड सनस्क्रीन जरूर से लगाइएगा, गाड़ी भी धीरे धीरे हले हले चलाइएगा। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है। चाचा बाय बाय, टेक केयर।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो
2: जब तक से सब तेरा तक,
3: जब तक
2: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
3: सब तेरा।
2: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Olive, 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.

आप सभी का स्वागत है ये ऑल ओवर रिचार्ज। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं सिलसिला एक जर्नी का, बातों का, गानों का, किस्सों का, खबरों का, कहानियों का। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इंतजार किस बात का है, और अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या क्या किया आपने आज जिससे आपको बहुत बढ़िया फील हुआ, मैसेज कीजिए मुझे। और यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और शो को किक स्टार्ट करते हैं। ये है रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटी सी कहानी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे उस इंसान के बारे में जिसने बहुत बड़ा काम किया है, जिसके कारण आज भी इंडिया के क्रिकेटिंग सर्कल में उनका नाम आता है, साथ ही साथ उनके नाम पे ही इंडिया का नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप है। मैं बात कर रहा हूँ रणजी ट्रॉफी के बारे में, जो 1934 में शुरू हुआ था। इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने शुरू किया था, मगर उस टाइम पे इसका नाम था क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। लेकिन सेकेंड एडिशन से रणजीत सिंह जी के ऑनर में जो है इस टूर्नामेंट को रणजी ट्रॉफी का नाम दिया गया, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार से लोग रणजी बुलाते थे। उनकी कहानी पे हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जरा बात करना चाहेंगे। डिटेल में बात करेंगे गानों के उस पार। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदा लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज,
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ओलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Yeah. Wanna feel that?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई रणजी ट्रॉफी के बारे में, कहानी के बारे में जो हमने बात करके शुरू की थी थोड़ी देर पहले, अफगानों के इस पर हम आ चुके हैं। अब जरा उनके लेगेसी के बारे में बात करते हैं। तो 1896 में उन्होंने डेब्यू किया। अब उनका नाम इतना बड़ा क्यों है, पहले हम ये जानते हैं, क्योंकि वो पहले इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला है। 1896 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लिश टीम में जो है डेब्यू किया, और वो भी एक इजी डेब्यू नहीं था, क्योंकि उस टाइम लॉर्ड हैरिस को लगा कि भाई इंग्लैंड टीम में सिर्फ इंग्लिश बॉर्न प्लेयर्स होने चाहिए। मगर पब्लिक प्रेशर के फोर्स के कारण जो है उनको सेकेंड टेस्ट में इंग्लैंड टीम में इंक्लूड किया गया, और काफी धमाकेदार डेब्यू वहां पे उन्होंने दिखाया। इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 62 रन स्कोर किए, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में 154 नॉट आउट इन्होंने स्कोर किया। और इसमें खास बात यह है कि ये ऐसे पहले बैट्समैन बने जिन्होंने एक टेस्ट सेंचुरी बिफोर लंच स्कोर किया, हिटिंग 113 रन इन अ सिंगल सेशन। और इसके बाद जो टाइम था, स्पेशली 1897 से 98 का जो सीरीज था, जिसमें रणजीत सिंह जी इंग्लैंड के स्टार थे जब वो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तो इन्होंने धूल चटा दी। हर जगह इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बॉल को पहुंचा दिया, और इनका एक ट्रेडमार्क शॉट लेग ग्लांस जो है वो काफी फेमस हुआ। इनका करियर बेस्ट स्कोर 175 रन इन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में फर्स्ट टेस्ट मैच जो सिडनी में हुआ था वहां पे स्कोर किया। और उसके बाद इनके अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में गानों के उस पार। टिल देन स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक,
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
2: सब तेरा।
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन. ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के. और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू. दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है. हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे.
1: रेडियो ऑलिव पे. रेडियो ऑलिव पे. स्टोरी ऑफ

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
2: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर, ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Doctor on air, Doctor on air, brought to you by Nasim Healthcare.
4: Olive laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge.
0: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindaas.
5: Olive recharge.
2: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾ, ਲਾਕੇ ਕਦੇ ਆਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ।
1: Welcome back, you are listening to Radio Olive 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो हम बात कर रहे थे रंजीत सिंह जी के लेगेसी के बारे में, अब उनके थोड़े स्टैटिस्टिक्स जरा देख लेते हैं, मेजर रिकॉर्ड्स एंड माइलस्टोन्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैट्स की ओर जाते हैं। इन्होंने 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के लिए, जहां पे 26 इनिंग्स में 4 बार ये नॉट आउट रहे हैं। इनके टोटल रन जो है 989 है और हाइएस्ट स्कोर इज 175 विद एन एवरेज ऑफ 44.95, 2 सेंचुरीज, 6 फिफ्टीज और 1 विकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो भाई ये तूफान थे तूफान। 307 मैचेस में 500 इनिंग्स खेला है, 62 बार ये नॉट आउट रहे हैं, 24,600 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 285 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 56.37 का एवरेज है, 7200 हैं एंड 1950s हैं और विकेट्स इन्होंने 133 चटकाए हैं। अगर हम मेजर रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स की बात करें तो इनके डेब्यू के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 3000 रन का बैरियर क्रॉस करने वाले ये पहले प्लेयर थे इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन में एंड ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू क्रॉस 3000 रन इन ए सिंगल कैलेंडर ईयर। और 1900 में इन्होंने 3065 रन्स भी स्कोर किए और इनके 1896 के रिकॉर्ड शैटरिंग सीजन के लिए इनको 1897 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, इस महान हस्ती को सलाम करते हुए, क्रिकेट को सलाम करते हुए अगला गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah,

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक मिथ जो है हम ब्रेक करना चाहते हैं। एक मिथ हमने सुना था कि मुंह खोलकर सोना बिल्कुल हार्मलेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बेझिझक बेखौफ सो जाओ। मगर क्या सही में ऐसा है? तो चलिए चेकआउट करते हैं। फैक्ट ये कहता है कि कभी कभी मुंह खोलकर सोना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर ये रेगुलरली होता है तो ये ओरल हेल्थ और स्लीप क्वालिटी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। रिसर्च ये दिखाती है कि क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, इसके कारण जो है माउथ ड्राई हो जाता है, क्योंकि सलाइवा हमारे माउथ में जो है वो कम हो जाता है। अब सलाइवे का काम होता है बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, फूड पार्टिकल्स को वॉश करना, हार्मफुल एसिड को न्यूट्रलाइज करना, टीथ और गम्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब हमारा मुंह ड्राई रहेगा तो क्या होगा? एक तो बैड ब्रेथ का रिस्क बढ़ सकता है, कैविटीज डेवलप होने के पॉसिबिलिटीज और इंक्रीज हो सकते हैं, गम डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ सकता है। और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग कभी कभी स्नोरिंग और स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग से भी लिंक्ड हो सकती है। इसकी वजह से स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है और सुबह उठने पर थकान या ड्राई थ्रोट जो है हम फील कर सकते हैं। अगर आप रोज मुंह खोलकर सोते हैं तो इसका रीजन नेसल ब्लॉकेज, एलर्जीज, डिविएटेड नेसल सेप्टम या स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल हेल्प सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं देना है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और इस वक्त यार मैंने एक पोस्ट देखा था, काफी फनी लगा मुझे, मतलब अम्यूजिंग भी लगा। कुछ एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि उनके बॉसेस ने एक एआई साइकोसिस डेवलप कर लिया है और वो चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते नहीं, वो एक्सपेक्ट करते हैं उनके जो ह्यूमंस हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म करे जैसा एआई ने प्रेडिक्ट किया है। और मुझे लगता है कि ये जो एक मेटामॉर्फोसिस हुआ है बॉस लोगों का, ये सोचना कि भाई जैसे एआई बोल रहा है वैसे ही होगा, ना ना मुन्ना ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एआई में एक फैक्टर की कमी है, वो है ह्यूमन कोशेंट की। तो जब तक वो नहीं है तो हम उसके चीज़ों को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों में भी जो है हमें ये फोकस देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट करना कि इंसान भी मशीन की तरह ही काम करेगा या फिर मशीन की तरह ही आउटपुट देगा, इट इज़ नॉट राइट। इंसान एक रीज़न के लिए, भाई मुझे लगता है कि यार ये दुनिया ना इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना भूल गई है और लोग इंसानियत ही भूल रहे हैं शायद धीरे धीरे। फिलहाल यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग खबर जो है हमारे हाथ में लगी है। ये सुनने को आया है कि मेटा एआई जो है पब्लिक इंस्टाग्राम फोटोज विदाउट वार्निंग यूज कर रहा है, मगर हम इस चीज को ऑफ कर सकते हैं अपने सेटिंग्स में। तो क्या करना है मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम ओपन करना है, प्रोफाइल में जाना है और जो थ्री लाइंस होते हैं ना टॉप राइट में, उसमें जाना है। उसके बाद वहां पे शेयरिंग एंड रीयूज करके एक ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कीजिए और एक सेक्शन आएगा जिसमें हम बता सकते हैं कि अपने पोस्ट हमारे रील्स हमें शेयर करने नहीं करने हैं, रीयूज करने नहीं करने हैं। तो अगर हम उसे टॉगल ऑफ कर देंगे तो जो है ये नहीं कर पाएंगे पब्लिक चीज़ों को, यानी कि पब्लिक पोस्ट और पब्लिक रील्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो टर्निंग दिस ऑफ ओनली स्टॉप्स न्यू क्रिएशंस, जो ऑलरेडी बन चुके हैं आपके फोटोज से या फिर चीज से जो लोगों ने रीयूज किया है वो डिलीट नहीं होगा। और कभी कभी ये सेटिंग मिसिंग हो सकता है क्योंकि अपडेट धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। इन केस अगर आपके इंस्टाग्राम ऐप में आपने ये नहीं देखा तो कोई बात नहीं, थोड़ा अपडेट के लिए वेट कीजिए, वो आ जाएगा। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे कुछ बहुत बढ़िया बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप अपने फोन के बैटरी को सेव करना चाहते हैं, स्टोरेज को सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला अगर आपके फोन में ओलेड या फिर अमोलेड स्क्रीन है तो फिर एक सॉलिड ब्लैक वॉलपेपर आप लगा सकते हैं जो उन स्पेसिफिक पिक्सल को कम्प्लीटली शट ऑफ कर देता है ताकि आपके बैटरी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर जो है बचा रहे। और बीच बीच में आप ब्राउजर कैश जो है उसे क्लियर करते रहिए। सफारी या फिर गूगल क्रोम जो है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में ऐसे डेटा जो है सेव कर देता है, तो उसको क्लियर करते रहेंगे तो और स्पेस मिलता रहेगा। साथ ही साथ ब्राउजिंग हिस्ट्री भी अगर आप मंथली क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा स्टोरेज जो है फ्री अप हो सकता है। एंड गूगल मैप में जाके आप प्रोफाइल पिक्चर में जाके ऑफलाइन मैप अपने सिटी का अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बैटरी और डेटा आप नेविगेट करते वक्त सेव कर सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्यार किया है? अगर किया है और नहीं भी किया है तो सीधा इंस्टाग्राम पे जाइए, रेडियो ओलिव के पेज को चेकआउट कीजिए, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो सीधा फॉलो कीजिए, एक ही बार दबाना है, और उसके साथ साथ हमारे पोस्ट कंटेंट को चेकआउट कीजिए, आप अपने फीडबैक्स बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए उन कॉन्टेंट के साथ, और उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो कहीं पर भी हैं, यहाँ पे हैं या फिर मुल्क में है या फिर दुनिया में कहीं पे भी है, उनको आप जो है हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी जहां पर भी वो है वहां बैठे बैठे हमारे साथ जो है इस जर्नी में कनेक्ट कर पाए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: जब तक से सब तेरा तक,
2: जब तक,
1: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
2: सब तेरा।
1: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day. अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: रेडियो ऑलिव पे, रेडियो ऑलिव पे। Story of the day.
2: Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day.
3: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे सिमरन आ जाएगी। तो सिमरन का खुली बाहों से स्वागत करना, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार देना, और जाते जाते जाते यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे हम अगले दिन दोपहर को 2 बजे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, इवनिंग को जबरदस्त बनाइएगा और हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी दिक्कत हो, मुश्किल हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जियो बिंदास। रेडियो

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

अगर वो अपना नाम नहीं बताते तो मैं बता देती हूँ। सुनने दो मैं कहनी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल जबरदस्त

इधर भी चले हो, रेडियो ऑलिव जो है ऑन रहना चाहिए क्योंकि चार घंटे अपने हैं बेबी। 5:05 पहलानी सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे। तो फिर बताओ दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का दिन? बढ़िया रहा या फिर धीरे धीरे करके गुजरा? जैसा भी रहा, जो भी रहा, अभी शाम हो चुकी है, भूल जाओ सब, टेंशन नहीं लेनी है यार। कल का दिन एक नई वो क्या कहते हैं उम्मीद लेके आएगा, और कल तो उम्मीदें होंगी, एक्चुअली उम्मीद नहीं होगी क्योंकि कल तो थर्सडे है ना, कल वीकेंड आ जाएगा अपने लिए। सो सबसे पहले आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस एकदम स्माइल के साथ वॉइस नोट भेजोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा यार। 3311106 3 पर जियो बिंदास।

ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਈਵਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। लेटेंट जो है वो उसका इंडियाज गॉट लेटेंट सॉरी सीजन टू में ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और ये गाने के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि इतनी रील्स बन चुकी, इतने एडिट्स हो चुके हैं, 500 मिलियन स्ट्रीम्स जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पे हो चुका है इसका। तो ये गाना मतलब टोटल वायरल हो चुका है। लेकिन इस गाने के बारे में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये गाना स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये AI के थ्रू जो है म्यूजिक बना है। एक नागपुर में प्रोड्यूसर था, उसने इसको क्रिएट किया था। लोगों को लगता है कि भाई साहब ये गाना जो है वो किस तरीके से बना हुआ, कोई भी स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो अब जब इस गाने के बारे में बात हो रही है तो क्या

0: 24 मिनट हर हर हार्ट शेप का पत्ता रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए ताकि आपको कार में बैठ के मेरा इंतजार ना करना पड़े। रेडियो ऑलिव में अगर आपकी सॉरी आपके फोन में अगर रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन रहेगी तो बहुत इजी पीजी काम हो जाएगा यार। और आप लोग सही में बड़े क्यूट हो यार।
1: हाय सिमरन।
0: हाय।
1: वेरी नाइस हियरिंग टू यू।
0: थैंक यू।
1: ऑलवेज व्हेन आई एम इन द कार आई लिसन टू योर रेडियो स्टेशन। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस।
0: थैंक यू सो मच नवीन जी यार। और क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए।

0: नंबर गाने जो है वो आप लोगों के लिए चल रहे हैं, और एक नंबर जो है वो गर्मी के टाइम पे मैंगोज जो है वो बहुत ज्यादा लगते हैं। कौन कौन ऐसे है जिनको मैंगोज नहीं पसंद है? आपकी और हमारी कट्टी हो जाएगी एक मिनट के लिए पूरे, ठीक है? उसके बाद मैं अब भी कर लूंगी यार, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं बोले अगर नहीं रह सकती उस समय बाद आम की इसलिए कर रही हूँ। 17 टन पाकिस्तानी मैंगोज जो है वो सूख वाकई में जो एग्जीबिशन लगा था वो सोल्ड हुए हैं। एंड रिसेंटली मेरे को पता लगा है कि एक आम की किस्म होती है जिसको बोलते हैं लंगड़ा आम, और मेरी लिटरली बड़ी हंसी निकल गई थी। आप में से कितने लोगों को पता है कि लंगड़ा आम करके भी कोई चीज होती है? क्या और कोई फनी वैरायटी है आम की, आप मुझे बताइए। 3311063 पर
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just be

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
2: रेडियो ऑलिव नंबर वन
3: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज ओके

0: तो सारा मेरा उप्स
1: जो था वो सिंक हुआ था यार। 5:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है सिमरन कौर आपके साथ और आपकी बातों पे तो मैं मर जाती हूँ यार।
2: हाय सिमरन, हाउ आर यू? कैसी हो आप? अच्छी हो?
1: बहुत बढ़िया।
2: सारा दिन आपका वेट करते हैं फिर आप आती हो 5:00।
1: ओह थैंक यू।
2: ठीक हो गया?
1: हाँ जी ठीक हो गया।
2: हो सुनाओ कैसे हो? अच्छा गुजरा? अच्छा हो रहा है माशाल्लाह सब? कैसा?
1: ठीक हो गया मुझे बताइए। बहुत ज्यादा ठीक हो गया। ठीक हो गया मैं जिस तरह से मैं है ना करती हूँ ये ठीक हो गया बोलते हैं। बट हाउ स्वीट यार। इसी तरह से जब ये जो 4 घंटे का शो रहता है ना, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है इसी तरह से भेजा करो वॉइस नोट्स, बड़ा मजा आता है। 3311063 पर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। बातें अच्छी लगती है, शो अच्छा लगता है, गाने अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छा लगता है बोलो यार। ये इसी तरह से मैं शो के बीच बीच में शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ क्योंकि आप लोग म्यूजिक माइक और ये मेरा स्टूडियो जो है वो बिल्कुल है। और देखो यार हम सबको अपने अपने रूम से प्यार होता है। अपने रूम में जाते कमरे में जाते ही लाइट्स ऑन कर ली, एसी ऑन कर लिया, बढ़िया है जब आप हो तब हो। लेकिन जब आप रूम से बाहर जा रहे हो सो आप लोगों को सारी चीज़ें अनप्लग करनी चाहिए जो कि आपकी यूज़ नहीं हो रही है, तो उसको बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि करामा ने सारे रेजिडेंट्स को बोला है कि भाई अनप्लग करो जिनको आप नहीं यूज़ कर रहे हो। कई कई बार होता है यार रूम ठंडा मिलेगा क्योंकि बाहर बड़ी गर्मी है, एसी ऑन छोड़ जाते हैं, ये नहीं करना है यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: जब तक से सब तेरा तक,
3: जब तक
2: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
3: सब तेरा।
2: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: जब भी आप किसी के साथ कॉल पे हो, जूम कॉल पे हो, मतलब वॉइस नोट भेज रहे हो या जो भी है भाई, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। और ऑफिस की जूम मीटिंग चल रही थी बॉस के साथ और चार पांच लोग थे, और उसमें क्या होता है कि जब भी आप जूम कॉल पे होते हैं, हम सब क्या करते हैं, अपना माइक ऑफ करके अपनी अपनी कोई ना कोई भाषण जो है वो जरूर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, बट ऐसे टाइम पे माइक ऑफ है कि नहीं वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसमें मीटिंग चल रही थी और फिर ये कॉन्वर्सेशन सुनिए कि क्या हुआ।
2: यस मिस्टर हरमन सिंह,
3: Sir, I will deploy 110% band. I even have written down what I want.
4: Okay, good.
3: Leverage
4: our
3: code combination.
4: हर meeting में तो होते जैसा बटर बटर बटर बटर करता रहेगा और इसको कुछ काम नहीं है, हर meeting में आएगा, सबका credit खा लेगा और ऐसे English में तोता बन जाएगा।
2: Hello, Miss Saloni Nagar. Miss Saloni Nagar, am I audible to you?
4: होता है अकेला ही credit खा लेता।
2: Saloni Nagar, am I audible? Are you listening to me?
0: ये सलोनी नागर जो भी बोल रही थी उसे कलीग के बारे में माइक ऑन रह गया और सबने सुन लिया और ये वीडियो हो रहा है वायरल। सो बी केयरफुल गाइस।
5: अरे ये मेरा

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर
1: योर स्पेशल ऑफर
2: हाँ ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ
1: वाह ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है
2: बिल्कुल मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 Also visit our dental centers in Azizia or Muntaza Naseem Surgical and Medical Center Healthy smiles anytime
3: Hi everyone main hu Arman Malik 106.3 FM Radio Olive Jio Bindaas

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मौसम भी एकदम जज्बातों को उलट पलट कर रहा है यार.
1: मौसम आपके सुनो,
0: भाई साहब आज मौसम ने सारी हदें पार कर दी हैं. इस टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लेकिन नहीं, 46 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 48 डिग्री सेल्सियस, नियर मतलब 50 हो गया यार. विंड जो है 19 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी 21% है. सो ये है दोस्तों मौसम के हाल.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: OLIFB. Story of the day.
1: Story of the day.
2: अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
0: रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: खीर तो बड़ी सैड है लेकिन यहाँ पे हंसे या रोए कुछ समझ नहीं लग रहा। अरे बताती हूँ क्या, तो जितने भी फार्मर्स रहते हैं, जितने भी किसान रहते हैं, वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं ताकि हमारा पेट भर सके, है ना। लेकिन जितने भी फार्मर होते हैं, जितने भी किसान होते हैं, है ना, इनफैक्ट हमारे पंजाब में भी बहुत सारे फार्मर हैं, बहुत सारे किसान हैं, तो उनका हमेशा यही होता है कि भाई फसल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फसल को कुछ नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। सो मैं जर्मनी की एक बात जो है वो पढ़ रही थी, जर्मनी में 25 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़िया जो है वो तरीके से आलू जो है वो नहीं उगे हैं। इतने 25 सालों में भर भर के आलू जो है वो उग गए हैं वहाँ पर, कि इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोगों को वहाँ पर ये जो आलू हैं, क्योंकि इनकी खेती बड़ी तगड़ी हो गई है, वो मिलियंस ऑफ मिलियन किलोग्राम जो आलू है वो रेजिडेंट्स को, फूड बैंक्स को, बर्लिन ज़ू को वो दिए जा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा उग गए हैं। तो सोचो एक मतलब वही कह रही हूँ कि इस बात पे वो बेचारे किसान भी सोच रहे हैं कि भाई हंसेंगे रोए, क्योंकि अब इतने ज्यादा हो गए हैं ना, उनको वो बेच पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम फ्री ले लो। मैं भी सर भी ना। सुंदरी रेडियो ऑलिव कर के दे जी हो बिंदास रेडियो ऑलिव पर
1: Song of the hour. ये गाना करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas. World's favorite.

जी खामोश नहीं हो सकती, बताओ खामोश हो जाऊंगी तो आपका एंटरटेनमेंट कौन करेगा। मैं कह रही सुनियो के दादा की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ ट्रिविया शिविया में आज हम बात करने वाले

सो कोई मिल गया कुछ कुछ होता है फिल्म के बारे में बात करेंगे। करण जौहर जो थे ना, वो रानी मुखर्जी की आवाज जो थी ना, क्योंकि हस्की वॉइस थी उनकी, वो चाहते थे कि उनकी आवाज कोई डब करे, बट उनको ये नहीं ना पता था कि भाई उनकी ये जो हस्की आवाज है वो एक ट्रेडमार्क बन जाएगी। एंड इसमें एक सीन आता है ना फिल्म में जिसमें वो नीलम का शो चल रहा होता है, राइट? तो नीलम के शो में जिसमें शाहरुख खान जो है वो बोलता है, और उसके बाद वो एक बंदा आता है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि छोड़ दे, है ना, क्योंकि मुझे नई मिल गई है। सो वो जो लड़का है वो, उसका रोल पता किसने किया था? निखिल आडवाणी ने, जिसमें बाद में जाके शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो जो थी वो डायरेक्ट की थी। एंड उसमें जो नई लड़की मिलती है वो होती है फारा खान, जो जिसने शाहरुख खान की मैं हूं ना एंड ओम शांति ओम को जो है वो डायरेक्ट किया था। सो या, इस फिल्म से जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुंदर ये रेडियो ऑलिव गौर, कहती रही है जियो बिंदास।

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas। Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ओए होए होए, बस थोड़ी देर में आएगा, लेकिन अभी सबसे पहले आएगा
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बिल्कुल जरूरी है यार, आपकी मेंटल हेल्थ, खुद को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं लिखा था, कहते कि पहले लगता था कि रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन अब समझ में आया कि खुद को संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, हमको लगता है कि रिश्ते बहुत बहुत बड़ी चीज होते हैं, रिश्ते ऑफकोर्स बहुत बड़ी चीज होते हैं। रिश्तों को संभालेंगे आप तब जब आप खुद को संभाल पाएंगे, जब आप खुद ही डावाडोल हो, खुद ही आपके मेंटल हेल्थ की लगी पड़ी है, आप अपने आपे में नहीं हो, तो फिर रिश्तों को प्रायोरिटाइज करके आप क्या ही कर लोगे। क्योंकि जब आप दिमाग सेंटर में रहेगा तभी आप रिश्ते निभा पाओगे। पहले खुद को संभालो, पहले खुद को समझो, फिर रिश्ते निभाओ। हर चीज जो है वो सिस्टमेटिकली चलती है। सो दिमाग का आपका सेंटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ जरूरी है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास, वापस लौट के नेम गेम खेल रही हूँ।
2: जब तक से सब तेरा तक,
3: जब तक,
2: जिसने हर गाने में डाला है इमोशंस का तड़का,
3: सब तेरा।
2: बॉलीवुड के मेलोडी किंग अरमान मलिक को रेडियो ऑल ऑफिश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सुने होंगे दादी की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है। तोड़े नाल बिना देर लगाए आप लोगों का नाम ले लेते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे मैं बोल दूं और आप भी सुन लो और आपके दोस्त लोग भी सुन रहे हैं, आप फिर अपने दोस्तों का नाम भी लिख देना, ठीक है? लेकिन नाम एक एक करके लिखना, क्योंकि मैं मैसेज ओपन नहीं करूंगी। जो स्क्रीन पे मुझे नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लो, 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजो। वॉइस नोट नहीं भेजना है, वीडियो मत भेजना, सिर्फ नाम लिख के भेजना। चलिए मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। जुनैद, आसमा, अब्बासी, अब्दुल समद, सईद, क्रिस हेंजो, वाजिद शेख, मोहम्मद यूसुफ, इलेन, मनोज दहाही, टेक बहादुर, थैंक यू सो मच, अनिसुर रहमान जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद वसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, गजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। क्विकली दोस्तों नाम लिख दो 3311106 3 पे, व्हाट्सएप करना है आपने। एस के जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यूसुफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अरसलान जी, अरसलान सनात, राहुल, गणेश थैंक यू सो मच, अनाबिया, फातिमा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किंजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रेशम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सूरज जी थैंक यू सो मच, इकरा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मोमिन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अदनान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला, फटाफट से नाम लिखो। अंशिता, अनवित थैंक यू सो मच, सोहन जी थैंक यू सो मच। देखिए यार ऐसे कुछ मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम लिखो, कुछ इमेजिनरी कुछ भी नाम लिख रहे हो यार। मेहर अंग्रेजी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अब्दुल्ला, बवजीर जी थैंक यू सो मच, सलीम जी थैंक यू सो मच, देवांशी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नजात जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने, अहमद अब्दुल्ला जी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, सविता जी थैंक यू सो मच, अब मैं मुंह हटा रही हूँ उधर से स्क्रीन से। सो जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप लिखो थैंक यू और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो, ठीक है?

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: This is Vani
2: Bhanushali.
3: Hey, this is Liana
4: D'Cruz. This is me, Hrithik Roshan.
5: Hi, I'm Alia Bhatt.
6: Hi, I'm Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
11: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक यार, कॉकटेल टू से तुझको सिमरन कौर आपके साथ। यार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कभी कभी मैं कुछ मैसेजेस जो है वो प्ले करना भूल जाती हूँ।
1: कैसी हैं आप? गुड इवनिंग।
0: बहुत बढ़िया।
1: यू नो आई कीप लुकिंग एट द वॉल क्लॉक वेटिंग फॉर योर शो टू कम ऑन एयर एंड इट्स सच अ ट्रीट टू आवर इयर्स एंड आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी थिंकिंग सेम अबाउट द शो। इट्स ऑलवेज अ great pleasure to listen to it.
0: Thank you so much Asma, so sweet of you yaar, you're so kind yaar, itna pyar se aap log sab messages karte ho, aise aise ho jata hai mujhe, theek hai chalo, lekin ab main teacher banne wali hu aur aapka test lene wali hu.
2: Radio Olive par ek chutki
3: song bahut badhiya
0: ek chutki song main chutki bhar song suna rahi hu, batao ye kaun sa gana hai. दिमाग की बत्ती जली, बताओ ये कौन सा गाना है। प्लीज प्लीज मुझे लिखना मत बिल्कुल भी, वॉइस नोट करना है एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए गाना कौन सा है, गाके बताइए या बोल के बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिप्लाई जरूर करना है। एक बार वापस से सुना रही हो, रिकॉर्डर ऑन कर लो। ऑन है, 3 2 1 गो। अगर आपको पता लगे गाना जो आप मतलब मैंने प्ले किया है वो आप जानते हैं तो मुझे फटाफट से वॉइस नोट कर दो, इंतजार कर रही हूँ यार।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: इस गाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ यू वेलकम। आई नो आप थैंक यू बोलने वाले हो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: लाइफ में हर तरह का फेज जो है वो हम सबको मिलता है. एक जैसा फेज चलता रहे तो जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है और लाइफ में फिर एक्सपीरियंस भी नहीं होते. तो हर इंसान जो एक्सपीरियंस लेके फिर रहे ना हर फेज से वो गुजर चुका है. अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के मैसेजेस माशाल्लाह.
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
0: एक चुटकी सॉन्ग ये था. सो आप लोगों के दिमाग की बत्तियां जली के नहीं, चलिए सुनते हैं.
3: हाय सिमरन, द सॉन्ग इज माइन माइन मुंडेर पे तेरी फ्रॉम हम आपके हैं कौन.
0: थैंक यू सो मच. मुझे लग रहा है कि आज आपका दिन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा. वो जान नहीं है, वो चहक नहीं है आपकी आवाज में. बताइएगा ठीक है, कैसा रहा आपका दिन आज का.
4: हेलो रोडियो वाली,
0: रोडियो
4: है माइनी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है काका. ओके दिस इज ज़हीर फ्रॉम कतार.
0: थैंक यू सो मच. ये जो लास्ट में किया बड़ा मजा आया यार. रोडियो हो गया तो ध्यान रखियो ठीक है.
5: सिमरन बड़ा अच्छा सॉन्ग आपने प्ले किया.
0: थैंक यू.
5: माइनी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गए तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा. थैंक यू, हैव अ लवली इवनिंग.
0: यू टू माय लव. आप लोग भी कमाल करते हो यार, मजा आ जाता है इस तरह से जब मेरी वाइब मैच करती है ना आप लोगों के साथ. ओहो हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ लिख के मत भेजा करो, क्योंकि मैसेज जब आप करते हो तो मुझे पता नहीं लगता ना कि आपका इमोशन जो है वो मैसेज के अंदर क्या है. इसीलिए जब किसी से बात करनी हो जरूरी वाली जो कि आपकी

हमारी होती है या फिर आप अपनी लाइफ में किसी से जरूरी बात कर रहे हैं तो कभी भी मैसेज पे बात मत करना, फोन पे बात करना, वॉइस नोट पे बात करना, क्योंकि उससे ना आप लोगों के इमोशंस जो है ना वो बाहर निकल के आते हैं। हे यार,

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। अगर बॉडी एक कंपनी होती तो सीईओ कौन होता? ब्रेन। ये सिर्फ सोचता नहीं, हर सेकंड लाखों मैसेजेस बॉडी में भेजता रहता है बिना एक भी नोटिफिकेशन के। और सबसे कमाल की बात, इसकी मेमोरी में ना डिलीट बटन होता है ना अंडू। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक किसी लैब में नहीं बना, वो हर इंसान के अंदर ही पैदा होता है। हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन डे।
1: रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: गॉड, इस गाने से कैसे बाहर आ जाए। कुछ गाने ऐसे हैं जिनको सुनते सुनते मैं खो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये गाने कभी भी खत्म ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब खत्म होता है यार।
1: कसारा ना करना अभी से आसान किस्तों में तो प्यार कर।
0: जैसे अब आज का शो खत्म हो गया और कल जो है अकेले नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी, फन करेंगे मिलके। और अभी के लिए ओवरथिंकिंग मत करना, टाइमली सो जाना, ज्यादा स्क्रॉल मत करना। लुक हु इज टॉकिंग, सिमरन कौर तो खुद यही करती है, किसी ने सुना तो नहीं ना, ओके किसी को बताना भी मत। ओके जी, ध्यान रखो यार, बस उतना अपना उतना ही बोलूंगी, टेंशन टूंशन नहीं लेनी है लाइफ के बीच। ओके कल शाम 5 बजे तुम्हें मिल दिया, खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन। Yaar, good night, just take care of yourself and love you, so kilo.
2: Radio Olive Park.
3: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
2: Fresh song of the hour.
3: Ye gana.

Good evening, you are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. Aaj main aapko ek aisi kahani sunati hoon jisne mujhe sach mein sochne par majboor kar diya tha. Imagine kijiye aap ek library mein kaam kar rahe ho. Ek din ek aadmi andar aata hai aur reception desk par ek bahut purani kitab rakh deta hai. Cover ghis chuka tha, pages peele pad chuke the. Librarian ne jab us kitab ke andar कार्ड इशू देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि वो किताब एक हफ्ते या एक महीने या लगभग एक साल पुरानी नहीं थी. लगभग 100 साल के बाद लाइब्रेरी वापस आई थी. ये इंसिडेंट अमेरिका की एक पब्लिक लाइब्रेरी का है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइब्रेरी ने उस इंसान से ना कोई फाइन लिया ना कोई कंप्लेंट की. उन्होंने सिर्फ उस किताब की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा बेटर लेट देन नेवर राइट, जो कहावत बहुत ही कॉमन है. बाद में पता चला कि वो किताब एक फैमिली के पास जनरेशन आफ्टर जनरेशन रह रही थी और किसी ने जानबूझकर नहीं रखी थी. बस वक्त के साथ वो एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ तक, एक घर से दूसरे घर तक चली गई. पता नहीं मुझे इस कहानी में सबसे खूबसूरत चीज़ क्यों लग रही है, लेकिन मुझे लगा कि कितना अच्छा ये पोस्ट था. किताब इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उसका वापस आना इम्पॉर्टेंट था. और शायद हमारी लाइफ भी ऐसे ही है. कभी किसी दोस्त को थैंक यू बोलना रह जाता है, कभी किसी से माफ़ी मांगना रह जाता है और हम सोचते रहते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई. लेकिन शायद देर सिर्फ घड़ी में ही होती है, रिश्तों में नहीं होती. तो आज का सवाल है कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मैसेज है जो आज तक ड्राफ्ट में ही पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि यार ठीक है अब तो निकल गया टाइम. सो बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आज अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चा वाला कहानी कौन सी है, तो ऑफकोर्स लोग बोलते हैं टाइटैनिक, यार ट्रेजेडी के रूप में लोग जानते हैं. लेकिन डेट थी 15 अप्रैल 1912. तब टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूब रहा था. शिप पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग लाइफ बोट की तरफ भाग रहे थे, पैनिक हर जगह था. लेकिन इसी बीच शिप का जो ऑर्केस्ट्रा था, किसी लीड की मैं बात कर रही हूँ, जो वो वहाँ पे वायलिन प्ले करता था, उसने एक फैसला लिया कि वो भागा नहीं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट उठाता है और म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देता है. हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनका मकसद लोगों को शांत रखना और पैनिक कम करना था, ताकि फैमिलीज और बच्चों को लाइफ बोट तक पहुंचाकर वो थोड़ा सा बेटर फील करें, उनको मौका मिले. सोचिए, जब हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ लोग किसी और के डर को कम करने के लिए म्यूजिक प्ले कर रहे थे. उनमें से कोई बच नहीं पाया. लेकिन टाइटैनिक की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो ऑर्केस्ट्रा का जिक्र ज़रूर होता है. शायद इसीलिए कहते हैं कि हीरो वो नहीं होता जो अपनी ज़िंदगी बचा ले, हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में किसी और को हिम्मत दे. अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो आपको हिम्मत किस चीज़ से मिलती है, किसी इंसान से, किसी गाने से या खुद से? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. आज अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजन कौन सा है, तो शायद बिना सोचे आप बोलोगे गूगल. लेकिन क्या आपको पता है, गूगल की शुरुआत किसी ग्लास ऑफिस या फिर बिलियन डॉलर कंपनी में नहीं हुई थी. इट वॉज 1998 जब लैरी पेज और सैगरी ब्रिन ने कैलिफोर्निया में एक दोस्त का गैरेज रेंट पर लिया था. बस वहीं उनका ऑफिस था. ना कोई ग्रैंड रिसेप्शन, ना कोई मीटिंग रूम, ना कोई कॉर्पोरेट सेटअप, सिर्फ कंप्यूटर्स और बहुत सारे वायर्स. और एक आइडिया आया. उनका मानना था कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत है, बस उसे सही तरीके से ढूंढने का सिस्टम होना चाहिए. उस वक्त शायद किसी से उन्होंने डिस्कस नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गैरेज एक दिन दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक बर्थ प्लेस बन जाएगा. और मुझे लगता है कि हर बड़े सपने की शुरुआत ना थोड़ी सी अजीब ही होती है, क्योंकि जब आइडिया नया होता है तो लोग उस पर हंस भी देते हैं, लेकिन वक्त आइडिया का सबसे बड़ा जज होता है. इसीलिए अगर आप किसी छोटी सी जगह से शुरुआत कर रहे हो तो उसे कभी भी कम मत समझिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सी बड़ी बड़ी कहानियाँ किसी गैरेज से, किसी हॉस्टल रूम से या किसी डाइनिंग टेबल से ही शुरू हुई हैं. सो अगर आपको अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिर्फ एक छोटा सा रूम से शुरू करना पड़ रहा है, तो आप बताइए आप क्या करोगे? कोई परफेक्ट टाइम का वेट करोगे या फिर आपके पास जो आइडिया है उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो डंडा.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. भाई कल थर्सडे है और इस थर्सडे के साथ वीकेंड भी आ जाएगा. सो वेरी गुड इवनिंग. हम सब रोज ना कई सारी आवाज़ें नोटिस करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में पहली बार किसी इंसान की आवाज़ कब रिकॉर्ड हुई होगी? टाइम था 1860. यस, फ़ोन भी नहीं था, टेप रिकॉर्डर भी नहीं था. उस वक्त फ्रेंच इन्वेंटर थे, उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था फोनोटोग्राफ. ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मशीन का पर्पस आवाज सुनाना नहीं था, वो सिर्फ साउंड वेव्स को पेपर पर ड्रॉ करती थी और उनकी ड्राइंग में एक फ्रेंच फोक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग भी थी. कई सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि उस पेपर में एक इंसान की आवाज़ छुपी हुई है. फिर 2008 में साइंटिस्ट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उन साउंड वेव्स को डिकोड किया और लगभग 150 साल के बाद दुनिया ने पहली बार वो आवाज़ सुनी. मुझे ये कहानी इसीलिए पसंद है क्योंकि कभी कभी हम जो काम आज करते हैं उसकी असली वैल्यू हमें नहीं होती, आने वाली जनरेशन को समझ में आती है. हो सकता है आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई डायरी लिख रहे हो या कोई छोटा सा काम कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट आज नहीं सालों बाद दिखे. हिस्ट्री की खूबसूरती है कि वो कभी भी जल्दी में नहीं होती. आज का सवाल है, अगर आपकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग 150 साल बाद सुनी जाए तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. नंबर 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

So, आज मैं आपसे एक फोटोग्राफ की बात करती हूँ, लेकिन ये कोई सेलिब्रिटी या वेडिंग फोटो तो है नहीं। ये तस्वीर है पुरानी एक पूरी अर्थ की। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो 1972 में अपोलो 17 मिशन का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस आ रहे थे। उसी टाइम पर उन्होंने एक फोटो क्लिक की थी जिसे दुनिया आज द ब्लू मार्बल के नाम से जानती है। पहली बार लोगों ने अपने प्लैनेट को इतनी क्लैरिटी और इतने स्पेस से देखा था। ना कोई बॉर्डर्स नज़र आ रहे थे, ना कोई कंट्री, ना कुछ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लू कलर का दिख रहा था। पूरी दुनिया एक्चुअली जो स्पेस से बिल्कुल अलग दिखती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक फ़ोटो ने जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा मोमेंट को इंस्पायर कर दिया था। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि हम सब एक ही घर शेयर करते हैं। कभी कभी पर्सपेक्टिव बदलने से पूरी कहानी बदल जाती है। हम अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन शायद बस हमें ना उन्हें थोड़ा दूर से देखने की ज़रूरत होती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाएँ तो क्या चीज़ है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love.
2: ये है midnight.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

अगर मैं हॉलीवुड बोलूं तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले वो पहाड़ी पर लगा हुआ व्हाइट साइन आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है वो साइन कभी भी परमानेंट था ही नहीं। 1923 में एक रियल स्टेट कंपनी ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने के लिए एक साइन लगाया था जिस पर लिखा था हॉलीवुड लैंड। प्लान ये था कि कुछ सालों बाद इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन लोगों को वो साइन इतना पसंद आया कि धीरे धीरे वो लॉस एंजलिस की पहचान बन गया। बाद में जो हॉलीवुड लैंड था उसका लैंड हटाया और फिर सिर्फ हॉलीवुड रह गया। सोचिए, जो चीज़ सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी वो आज दुनिया का सबसे फेमस लैंडमार्क बन चुकी है। लाइफ भी कभी कभी ऐसे ही होती है, हम किसी काम को टेम्प्रेरी समझकर शुरू कर देते हैं और वही काम हमारी पहचान बन जाती है। सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा काम था जो सिर्फ टेम्प्रेरी होना था, चाहे वो कोई बिजनेस हो चाहे वो कोई जॉब हो, लेकिन आज तक आप उसकी वजह से इतना आगे बढ़ पाए हैं, चाहे वो कोई जॉब है, कोई एजुकेशन है, कोई डिग्री है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106 3, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

एक सवाल आया, क्या ऐसा खाना बनाया जा सकता है जो जल्दी भी बन जाए, सस्ता भी हो और हर इंसान तक पहुंच जाए। कई महीनों की मेहनत के बाद 1958 में उन्होंने दुनिया की पहली इंस्टेंट नूडल बना दी। शुरुआत में लोगों को ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन आज हर साल दुनिया में 100 बिलियन से ज़्यादा इंस्टेंट नूडल सर्विंग जो है वो खाई जाती है। सो एक सिंपल सा आइडिया, और उसने दुनिया भर के स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, ऑफिस वर्कर्स और फैमिलीज के लिए लाइफ का एक हिस्सा बना दिया। और मैं तो जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही खाती हूँ। कभी कभी इनोवेशन का मतलब ना रॉकेट साइंस नहीं होता, कभी कभी इनोवेशन का मतलब होता है किसी आम इंसान की एवरीडे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको किसी एक डेली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्वेंट करना है और आपको चांस मिले, तो आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे? मतलब हम हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से डील करते हैं, जैसे कि रेगुलर कपड़े प्रेस करना, मेकअप करना, पर इन सबको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? कोई ऐसा आइडिया है आपके पास? सुन रहे हैं आप 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

हम सब ने कभी ना कभी किसी को लेटर लिखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने मून को लेटर लिखा है? 1969 में जब अपोलो 11 मिशन चांद पर जाने वाला था, दुनिया भर के बच्चों ने नासा को हजारों लेटर्स भेजे थे। किसी ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए गुड लक मैसेज लिखा था, किसी ने पूछा कि मून कैसा दिखता है, और किसी ने बस इतना लिखा कि प्लीज कम बैक सेफली। एस्ट्रोनॉट उन सारे लेटर्स को चांद पर तो नहीं लेकर जा सके, लेकिन उनमें से कई मैसेजेस उन तक जरूर पहुंचाए गए। मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि साइंस सिर्फ मशीन से नहीं बनती, साइंस क्यूरोसिटी से बनती है, और क्यूरोसिटी की कोई एज नहीं होती। एक छोटा बच्चे का सवाल था कि कभी कभी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चन है वो मुझे आपसे पूछना था, कि क्योंकि हर डिस्कवरी एक सवाल से शुरू होती है, सो आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर आप मून को एक छोटा सा लेटर भेज सकते तो उसकी पहली लाइन क्या होती? वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन मून को देखना पसंद करते हैं, यू नो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं सिर्फ मून की तरफ देख कर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311106 3। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, अब कल वीकेंड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो Olive. Bye, take care and stay tuned.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज,
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: This hour is brought to you by
1: Homes Are Us. We complete your home.
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

Lift 106.3 FM, Gio Bendaz. 106.3 FM.

Listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Chandni.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.